समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

ऐषा पूर्वजन्म कृत पापेसी पावोनिया बहु दुखासी निराहार उपवासी रात्रन दिवस तळमळे। ऐसे जाता बहुत दिवस दैवे पातला पुरुषोत्तम मास जो साक्षात पुरुषोत्तमास प्रिय विशेष

सफळ होते तुझ ऐसे, मग जाणुनी मास प्रभावासी, यथाविधी भक्तिभावेसी, सत्कर्म करिता अधिकमासी, काय फळासी वानावे। अरे त्वा जैसा साधिला स्वार्थ, ऐसा साधाया कोण।

श्रोते हो, आत्ताच आपण ऐकलात अधिक मासानिमित्त उपासनेचा विशेष कार्यक्रम अधिक मास महात्म्य। अधिक मास पोथी वाचन भाग्यश्री केसकर। निर्मिती ओरायन स्टुडिओज पुणे। प्रस्तुती भक्तिसुधा।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं संत मीराबाई की भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े और स्वर पंडित उल्लास कशाळकर।

0: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।
1: ओम गणा गणपति

आइए सुनते हैं शैलेंद्र जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने और इसे गाया है मन्ना डे और साथियों ने।

श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

ऐषा पूर्वजन्म कृत पापेसी पावोनिया बहु दुखासी निराहार उपवासी रात्रन दिवस तळमळे। ऐसे जाता बहुत दिवस दैवे पातला पुरुषोत्तम मास जो साक्षात पुरुषोत्तमास प्रिय विशेष असे पई त्या मासी ही तो पूर्ववत शीतवादादिके पीडित कृष्णपक्षा माजी कदाचित

पठण श्रवण फळ वर्णुनी ग्रंथ संपविला। हा एकत्रिंशाध्यायात्मक ग्रंथ झाला अलौकिक। भक्तिभावे संत सकळिक श्रवण पठण करोत सदा। आता जोडुनिया करद्वयासी प्रार्थितो सकळ।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं संत मीराबाई की भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े और स्वर पंडित उल्हास कशाळकर।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।

आइए सुनते हैं शैलेंद्र जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने और इसे गाया है मन्ना डे और साथियों ने।

श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।